0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशनार्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा

रचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के

जन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, सुबह ने दस्तक दे दी आपके दरों दीवारों पर और कहीं रिमझिम बारिश है, बूंदें कर रही हैं नृत्य, तो कहीं सुरों के संगीत से समा बांध दिया है बारिशों ने आपके शहर में। आपकी दोस्त सविता आ चुकी है स्टूडियो में लेकर सुहानी सुबह आज के सुहाने सफ़र के साथ। नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है और प्यार भरे नमस्कार के साथ पेश करती है आज के कार्यक्रम का पहला सुरीला गाना।

शिकायत। जी हाँ, शिकायत है किसी को क्या आपसे? अरे है तो सुबह उसको कह दीजिए ना सॉरी, और लगा लीजिए गले से, बस शिकायत हो जाएगी दूर। जी हाँ, पंछी आकाश में उड़ने लगे होंगे, भले ही आकाश में बदली छाई हुई है और रिमझिम रिमझिम कहीं कहीं बारिश की बूंदें बरस रही हैं, कहीं पर काला बादल छाया हुआ है, लग रहा है अभी बारिश होगी अभी बारिश होगी, और कई बार तो ऐसा लगता है कि अभी बारिश होते होते सारा दिन ही कट जाता है उन काले बादलों के साथ। दोस्तों ऐसा अक्सर होता है बरसात के मौसमों में। तो चलिए बरसात के मौसम के नज़ारे का आनंद उठाते उठाते, उसका लुफ्त उठाते उठाते हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सुहानी सुबह के सुहाने सफर में सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं आज के अखबारों की खास सुर्खियां। तो बढ़ते हैं अपने उसी पायदान की ओर। दोस्तों आज खास सुर्खियां अखबारों की जो है वो है, भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। दोस्तों ये परीक्षण कल हुआ था और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। यह सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा जो एक और खास खबर अखबार की वो ये है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ पहुंचा 50 लाख से अधिक परिवारों तक। जी हाँ, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। साथ ही योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाई है। गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना होगा। भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बताते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते बुनियादी ढांचे और विनिर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ टिकाऊ इस्पात की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भारत की स्थिति बेहतर है। दोस्तों एक और अखबार की खास सुर्खी की ओर हम बढ़ते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने 6ठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। जी हाँ, 4 दिन तक चलने वाली यह प्रतियोगिता रविवार तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के ओपी जिंदल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के बीच मित्रता, एकता, स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता सरकार के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाती है।

साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता जनप्रतिनिधियों को फिटनेस और खेलों के प्रति प्रेरित करती है। अगले खेलो इंडिया खेलों की मेजबानी तेलंगाना करेगा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां जो हमने की आपके साथ साझा। और कई बार दोस्तों किसी की जब याद आती है ना तो वो आती ही चली जाती है। आपको किसी की याद आ रही है तो चलिए सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में पारस मनी फिल्म का ये गीत।

क्या है, 2 सेकंड के अंदर आप उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि हम बरसों कुछ लोगों से बात ही नहीं कर पाते ज़िंदगी की भाग दौड़ की मसरूफियत के कारण। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हमें उनकी याद आती है और हम सोचते हैं आज फ़ोन करेंगे, कल फ़ोन करेंगे, फुर्सत के क्षण आएंगे तब हम उनसे बात करेंगे, भले ही दूर सही मिल ना सकें, पास बैठ ना सकें, उनके घर ना जा सकें तो उनसे बात ही कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार वो फुर्सत के क्षण हमें मिलते ही नहीं जिनमें हम उनसे बात कर लें। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब याद आती है ना तभी फ़ोन घुमा लीजिए, बिल्कुल बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो फिर आप उसमें अपने खाली समय है आपके पास और उस समय में आप रील्स देखते देखते या फ़ोन पर अपना समय किसी और चीज़ में हम लोग देखते देखते काफ़ी वक्त निकाल देते हैं। उससे भला है कि हम फ़ोन नंबर्स पर नज़र घुमाएं और देखें कि किससे हमारी बात बहुत दिनों से नहीं हुई है, उनसे बस बात कर लें और फिर उनको बोलें कि जब आपकी याद आती है तो बहुत याद आती है। बस देखिए, सामने वाले का भी दिल खुश हो जाएगा और आपका भी दिल खुशी से झूमने लगेगा।

0: दोस्तों, आज आपने किसी की तारीफ की है? की है तो बड़ी अच्छी बात है, और लेकिन दोस्तों कई बार हमें क्या होता है कि हम तारीफें ज़िंदगी में हर किसी को पसंद है। जी हाँ, हमारी कोई प्रशंसा करे, हमारी कोई तारीफ करे, सुनकर दिल खुश हो जाता है ना। आपका भी तो होता है ना, यदि हम कहते हैं कि आप हमारे बड़े ही अच्छे कॉलर हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं ध्यान से और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही खुशी हमें होती है जब आप कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो दोस्तों, तारीफ़ें भला किसको पसंद नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े कंजूस हो जाते हैं किसी की तारीफ करने के लिए। जी हाँ, हमें यदि किसी में क्या कोई कमी निकालनी है तो 2 सेकंड नहीं लगते, लेकिन तारीफ करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए कई बार वक्त लग जाता है। तो बस सुबह से कोशिश करिए कि हम 1 या 2 व्यक्ति की तो तारीफ कर ही दें, बिल्कुल, क्योंकि वो इस लायक हैं। दोस्तों, यदि हम तारीफ़ों से अपने दिन की शुरुआत करेंगे ना, तो देखिए, आपने सामने जिसकी तारीफ़ की है वो तो खुश है ही, आपका भी दिल खुशी से बागवां हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और अगला सेगमेंट है हमारा आज के दिन।
1: आज के दिन
0: दोस्तों, कहते हैं ना कि एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गई वो कुछ नहीं। कई बार अतीत की घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि वक्त मलाल करता है, लेकिन और लगता है कि बस वक्त यहीं थम जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये मुनासिब ही नहीं वक्त का थमना। क्योंकि किसी ऐसी घटना के घट जाने के बाद कई बार ऐसी भी घटनाएँ घटती हैं जिन पर कि सदियाँ नाज भी करती हैं। दोस्तों, ऐसा ही होता है ऐतिहासिक घटनाओं में, जो हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। ऐसे ही इतिहास को साझा करने के लिए आपकी दोस्त सविता फिलहाल बढ़ चुकी है कार्यक्रम में आगे। तो दोस्तों, हमारी जो पहली ऐतिहासिक घटना है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, वो है 7 अगस्त 980 को इब्न सीना का जन्म इसी दिन हुआ था। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान फलता फूलता हुआ वह सामनिद साम्राज्य के अधीन कार्यरत था। दर्शन और चिकित्सा में एवसीना के उल्लेखनीय योगदान ने उन्हें प्रारंभिक आधुनिक चिकित्सा के जनक की उपाधि दिलाई। सात अगस्त 1883 को इसी दिन जोआचिम रिंगेल नाइट्स का जन्म हुआ। 1904 में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता राल्फ बंच का जन्म हुआ। 1904 में सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृत और हिंदी साहित्य के भारतीय विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ। 1933 में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रोम का जन्म हुआ। 1938 में सोवियत रूसी रंग

मंच के एक अग्रणी कलाकार कॉन्स्टेंटिन स्टालिन वलास्की का भी निधन हुआ था और 1947 में बॉम्बे नगर निगम ने औपचारिक रूप से बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट का कार्यभार संभाला। 1985 में गीत सेठी विश्व शौकिया बिलियर्ड्स चैंपियन बनने वाले तीसरे भारतीय बने। तो ये थी आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने की आपके साथ साझा। आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण खास दिवस भी मनाए जाते हैं। आज है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में हथकरघा उद्योग और उनके बुनकरों को सम्मानित करना। इस वर्ष भारत जी हाँ बना रहा है अपना हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय प्रकाश स्तंभ दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन उन प्रकाश स्तंभों और उनके रखवालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने जहाज़ों और समुद्री उद्योग की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐतिहासिक दिवस जो हमने किए आपके साथ साझा। फिलहाल सुनवाएंगे आपको गीत, उसके बाद कुछ और भी खास है आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, प्यार भरे मौसम के साथ बारिशों का मौसम भी है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, वैसे कपड़े पहनिए जो जल्दी से सूख जाएं, और शूज़ भी वैसे ही इस्तेमाल करिए जो कि आप यदि ऑफिस कॉलेजेस या किसी भी वर्क प्लेस पर जाते हैं तो वो भीग भी जाएं तो जल्दी से सूख जाएं, वरना सर्दी लग जाएगी और हो जाएंगे आप बीमार। तो अपने आप को बारिश की जो रिमझिम बूंदें हैं ना, उनसे बचाते हुए भी आपको प्लान करना है सारे दिन का कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा बैग लेना है, कैसी शूज़ पहनने हैं और फिर किस समय में निकलना है। तो दोस्तों आज के दिन के मौसम का हाल हम आपको झटपट बता देते हैं ताकि आप प्लान कर सकें सारे दिन का। तो आगामी 24 घंटों में कोलकाता व कोलकाता के आसपास के इलाकों में साधारणतः आकाश में बादल तो छाए रहने की संभावना है ही, इसके साथ कहीं कहीं छुटपुट बारिश भी हो सकती है, हल्की से मध्यम तर और गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। जी हाँ, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस था जो कि सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस था जो कि सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम था। अधिकतम नमी 99%, न्यूनतम नमी 90%। कल 0.1.3 मिलीमीटर बारिश हुई। तो दोस्तों ये थी मौसम की जानकारी। जी हाँ, आज के दिन कुछ खास लोगों ने जन्म लिया था, उनके बारे में भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे जी हम तुम चोरी से।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सुबह के 7:37:09 हो चुके हैं। जी हाँ, आधा सफ़र हमारा करीब करीब पूरा हो चुका है दोस्तों आपके साथ, और अभी हम 8 बजे तक आपके साथ रहेंगे। तो जाइएगा कहीं नहीं। हाँ, यदि आपको कहीं जाने की तैयारी करनी है तो वो करते रहिए, क्योंकि इसमें यही तो सहूलियत है कि सुनते सुनते आप कर सकते हैं अपना काम भी। दोस्तों बताने वाले हैं कि आज के दिन किन खास व्यक्तियों ने जन्म लिया। तो हम आपको बताएं कि आज के दिन जन्म हुआ था मनकोम्बू सांबा सीवन स्वामीनाथन का, एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक, पादप आनुवंशिकी विद और प्रशासक मानवतावादी थे। हरित क्रांति में स्वामीनाथन को वैश्विक नेता माना जाता है। भारत में अधिक उपज देने वाले गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें हरित क्रांति का मुख्य सूत्रधार कहा जाता है। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में उनके नेतृत्व के कारण ही उन्हें 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, जिसे कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार या सर्वोच्च सम्मान के रूप में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। दोस्तों भारतीय जीवनीकार, इतिहासकार और अमेरिका के अरवाना शैम्पेन स्थित इलिनोइस विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई और मध्य पूर्वी अध्ययन केंद्र में शोध प्रोफेसर थे राजमोहन गांधी। उनके दादा महात्मा गांधी और नाना चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में भी अध्ययनरत थे। उनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1935 को। भारतीय पार्श्व गायक, जी हाँ, हिंदी मराठी दोनों भाषाओं में फिल्मों में गीत गाते हैं। भोजपुरी फिल्मों, उड़िया एल्बमों, भजनों और कोंकणी फिल्मों में भी उन्होंने गीत गाए हैं। वो हैं सुरेश ईश्वर वाडेकर। उन्हें सुगम संगीत के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1955 को।

तो पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर को देते हैं हम उनके जीवन के लिए, उनके स्वस्थ आयु की कामना करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। और आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

धीरे धीरे हमारे सुहाने सफ़र की सुहानी सुबह की मंजिल अपने मुकाम पर आने को है। और चलते चलते हम तो इतनी बात कहेंगे कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, बरसात हो या फिर जाड़े हो, हमारे ये जो मजदूर भाई हैं ना, जो ठेलों पर सामान को ले जाते हुए खींचते हुए रात दिन बस चलते रहते हैं दोस्तों, उनको आते आते मैं देख रही थी कि सुबह सुबह भी बारिश की बूंदों के बीच में अपने ऊपर तिरपाल जैसा प्लास्टिक डाल करके और नंगे पांव जो साइकिल वैन होती है या फिर पैरों से भागने वाली अपने कंधे पर लेकर के वो उसको दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो मेरा दिल किया कि आज मैं उनके सम्मान में उनको सल्यूट करूं, उन्हें सलाम करूं, उनको नमन करूं, क्योंकि हर निर्माण, हर वस्तु और हर व्यवस्था के पीछे हमारे एक न एक मजदूर भाई का हाथ होता है। दिन रात काम करके वो अपने पर मेहनत से परिवार और देश को आगे बढ़ाते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और पसीना और लगन से ही हमारा समाज, हमारा शहर और देश की जो असली नींव है, तरक्की है, वो उसका आधार है। तो भला उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो आज के दिन उनका शुक्रिया अदा करते हैं।

जी हाँ, तमन्नाओं की तकदीर संवारते संवारते अब फिलहाल आपकी दोस्त सविता आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी 10 बजे नॉन स्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर और 101 जी हमारा FM गोल्ड पर भी मुलाकात होगी यहीं पर 11:10 पर। तो जाएंगे हम कहीं नहीं, बस छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर हम आपके पास आते ही रहेंगे। चलते चलते छत्रपति शिवाजी की एक दो पंक्तियां आपके साथ जरूर साझा करते जाएंगे कि शत्रु कितना ही बलवान हो उसे दृढ़ इरादों से ही हरा सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी सुहानी हो, सफ़र आपका खूबसूरत हो, ऐसी ही दुआओं के साथ फ़िलहाल के लिए आपकी दोस्त सविता आपसे चाहती है इजाज़त। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। FM गोल्ड यानी खरा सोना पर मैं थी सविता।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
6: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
4: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर

0: रही है।
1: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपनी कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्र और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
4: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें। उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि

0: हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
1: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The center has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Act 2021.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई।

0: है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने का जैसा बताया। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को, बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस 2 सेंट लुइस रैपिड और बिल्ड्स का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जवाखोर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The center has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the act came into

0: रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
1: बैठक की सह अध्यक्षता भारत के पूर्व विदेशों के प्रभारी सचिव रुदेन्द्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्योक गोह ने की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। इस रोडमैप आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, संपर्क व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की योजना शामिल है। विश्व दर्पण के लिए सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। ये कार्यकारी आदेश जून में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के कुछ सप्ताह बाद आए हैं जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से मौजूद माता पिता से जन्मे बच्चे 14वें संशोधन के नागरिकता खंड के तहत स्वतः अमेरिकी नागरिकता के हकदार हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि ईरान से जुड़ा संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। श्री ट्रंप का कहना है कि ईरान अब और अधिक समय तक टिक नहीं सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में ईरान में किए गए अपने इस महत्वपूर्ण अभियान का बचाव किया और तर्क दिया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अमेरिका ईरान समझौते की संभावना पर श्री ट्रंप ने कहा कि बातचीत जारी है और प्रगति हो रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को उनके प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 56 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: ये मार्च में कंपनी द्वारा हारे गए एक ऐतिहासिक मुकदमे का दूसरा चरण है। न्यायाधीश ब्रायन बिटशाइड ने फैसला सुनाया था कि कुल धनराशि में से 42

0: 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर युवाओं के उपचार सेवाओं के लिए उपयोग किए जाएंगे, जबकि शेष राशि अगले 5 वर्षों में जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य संबंधित खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी। अभियोजकों ने न्यायाधीश से मेटा में मूलभूत बदलाव लागू करने का अनुरोध किया था, जिनका उद्देश्य व्यसनकारी सुविधाओं पर लगाम लगाना, आयु सत्यापन में सुधार करना और कड़ी निगरानी के माध्यम से बाल यौन शोषण को रोकना था। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: चीन में जातीय एकता कानून लागू किए जाने के विरोध में तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा धर्मशाला में शुरू की गई भूख हड़ताल आज 20वें दिन में प्रवेश कर गई। ये विरोध चीन के जातीय एकता कानून के खिलाफ है, जो प्रदर्शनकारियों के अनुसार तिब्बतियों सहित अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान और अधिकारों के लिए खतरा है। निर्वासित तिब्बती संसद के 3 सदस्यों ने भी आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए धर्मशाला में भूख हड़ताल में भाग लिया। 19 जुलाई से तिब्बती युवा कांग्रेस तिब्बतियों की आवाज को बुलंद करने और तिब्बत के बारे में सच्चाई को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए एक वैश्विक विरोध अभियान चला रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला मामलों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इबोला के कुल मामलों की संख्या 4,053 तक पहुंच गई है, जिसमें 1,850 मौतें भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि कांगो में इबोला के प्रकोप से 330 बच्चों की मौत हो गई है। ब्राजील की फेडरल पुलिस ने 2024 में हुई विमान दुर्घटना के मामले में वोपास के 16 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए हैं। इस हादसे में विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई थी। जांचकर्ताओं ने एयरलाइन पर गड़बड़ी, लापरवाही और जरूरी काम न करने का आरोप लगाया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज़्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदोरोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। प्रज्ञानंदा ने 5 दिवसीय प्रतियोगिता में शुरू से अंत तक बढ़त बनाए रखी। अश्मिता चालीहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से जारी है। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्मों द्वारा युवाओं को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 56,70,00,000 अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब जीता और अश्मिता चालीहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. India-Singapore review progress of bilateral cooperation under 8 areas outlined by roadmap for India-Singapore comprehensive strategic partnership. U.S. President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. New Mexico court orders Meta to pay $567 million to address harm its platforms have caused to young people. Indian Grandmaster R. Pragyanand clinches Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in United States. And in badminton, Ashmita Chaliha storms into the women's single semifinals of Korea Masters in Asan. India India and Singapore have reviewed the progress of bilateral cooperation under the 8

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। यह अधिनियम कल से प्रभावी हुआ। इससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ऐप के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना

0: साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में जारी प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। आंदोलनरत छात्रों ने कल शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वे भी विद्यार्थी की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जाओखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। इससे पहले जून में प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में आयोजित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Centre has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force yesterday, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy

नमस्कार दोस्तों, एक और खूबसूरत एहसास के लिए हम आ गए हैं एफएम गोल्ड यानी खरा सोना पर। जी हाँ, जो सुकून दे, यादों के झरोखे भी खोल दे और मन को भीतर तक छू भी जाए। आज की सुबह हम एक ऐसी आवाज़ को समर्पित कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी यादों, बातों और गीतों का सिलसिला चलेगा जिसने ना सिर्फ गज़लों को संगीत का संगीत रहने दिया बल्कि उसे हर घर, हर दिल और हर एहसास का हिस्सा बना लिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आवाज़ आपके समक्ष है, पहचान लीजिए। वो हैं गजलों के जादूगर।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गजल सम्राट पंकज उदास की, जिनका एक एक लफ्ज सीधे दिल तक पहुँचता है। ना उनकी गायकी में कोई शोर है ना दिखावा, लेकिन असर इतना गहरा कि दिल में समा जाए। भारतीय संगीत जगत में अगर गजलों की बात होती तो कई बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन पंकज उदास का नाम एक अलग सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने गज़ल को उस दौर में नई पहचान दी जब फिल्मी गीतों का दबदबा था। उन्होंने साबित किया कि अगर आवाज़ में सच्चाई हो तो शब्दों में एहसास श्रोता हर शैली को अपना लेता है। 17 मई 1951 को गुजरात के राजकोट जिले के जेतपुर में जन्मे पंकज उदास एक ऐसे परिवार से थे जहां संगीत सिर्फ शौक नहीं जीवन का हिस्सा था। उनके पिता केशु भाई उदास सरकारी अधिकारी थे, लेकिन संगीत से बेहद प्रेम करते थे। माँ भी संगीत की अच्छी समझ रखती थी। घर में अक्सर सुरों की महफिल सजती। यही माहौल तीनों भाइयों मनहर उदास, पंकज उदास और निर्मल उदास को संगीत की दुनिया तक ले आया। बचपन में पंकज उदास बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्हें खेलकूद से ज़्यादा संगीत में रुचि थी। कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते तब पंकज घंटों अपने गुरुओं की बातों ध्यान से सुनते और रियाज करते। संगीत उनके लिए कभी शौक नहीं बना, बल्कि वो उनकी साधना बन गया।

पंकज उदास ने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने स्थानीय गुरुओं से ली, बाद में शास्त्रीय संगीत का गहन अध्ययन किया। यही कारण है कि उनकी हर गजल में सुरों की गहराई साफ सुनाई देती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की गंभीरता को आम श्रोता के लिए सहज बना दिया। उनकी गजलें विद्वानों को भी पसंद आती थी, तो वहीं आम लोगों को भी। 70 का दशक भारतीय संगीत के लिए बदलाव का दौर था।

किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे दिग्गजों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में गज़ल गायक के रूप में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम तो था नहीं, लेकिन पंकज उदास थे जिन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने छोटे छोटे मंचों से शुरुआत की, महफिलों में गाया और धीरे धीरे अपनी अलग जगह बनानी शुरू कर दी। उनके बड़े भाई मनहर उदास पहले से ही संगीत की दुनिया में सक्रिय थे। कई लोगों ने सोचा कि पंकज भी फिल्मी गायकी की ओर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना। उन्होंने गज़लों को अपना जीवन बनाया। यही फैसला आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। और एक रोचक बात और है दोस्तों, वो रोचक बात क्या है बताऊंगी, लेकिन पहले फिल्म बाजीगर का ये गीत सुनवाऊंगी जो पंकज उदास की आवाज़ में आप सुनेंगे।

दोस्तों, शुरुआती दिनों में वे उर्दू शायरी को सिर्फ गाते नहीं थे। जी हाँ, पंकज उदास उर्दू शायरी को सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि उसके अर्थ को समझने के लिए घंटों बिताते। उनका मानना था कि जब तक गायक शब्दों को महसूस नहीं करेगा तब तक श्रोता भी उन्हें महसूस नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि उनकी आवाज़ में हमेशा एक सच्चाई हमें सुनाई देती है। धीरे धीरे उनके एल्बम्स आने लगे, कैसेट कंपनियों ने उनकी आवाज़ की ताकत को पहचाना। उस समय कैसेट का दौर अपने चरम पर था। लोग अपने पसंद के गायक की कैसेटें खरीद कर बार बार सुनते थे। पंकज उदास के एल्बम देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगे। उनकी गज़लें सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कस्बों में भी पहुँच गईं। उनकी गायकी की सबसे बड़ी पहचान थी सादगी। जी हाँ, ऊंचे सुर ना ऊंचे सुरों का दिखावा था ना आवश्यक ताने थी, मतलब अनावश्यक ताने वो नहीं लेते थे और ना ही ऊंचे ऊंचे सुरों को दिखाते थे। बस शब्द, सुर और एहसास, यही वजह थी कि वो व्यक्ति गज़लें नहीं भी सुनता हो वह भी पंकज उदास की गज़लें सुनकर रुक जाता था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। ऐसा लगता जैसे कोई अपना व्यक्ति आपके सामने बैठकर दिल की बात कह रहा है, और यही अपनापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जी, उनकी गज़लों में प्रेम था, विरह था, उम्मीद थी, तन्हाई थी, लेकिन सबसे बढ़कर इंसानियत थी। आज भी जब उनके शुरुआती एल्बम या उनके गीत सुनते हैं तो दोस्तों महसूस होता है कि समय बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन अच्छी आवाज़ और अच्छे शब्द कभी पुराने नहीं होते। कलाकार की पहचान तो उसकी कला के साथ समय से आगे निकल जाती है।

दोस्तों, पंकज उदास सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीयों के बेहद करीब थे और प्रिय कलाकार थे। लंदन, दुबई, कनाडा, अमेरिका, दुनिया के कई देशों में उनके कार्यक्रम हुआ करते थे। वहाँ रहने वाले लोग उनकी गज़लों में अपने वतन की खुशबू महसूस करते। जब वे मंच पर गाते तो तालियों की गूंज देर तक थमती नहीं थी। उनके व्यक्तित्व की एक और खूबी थी।

की विनम्रता। इतनी लोकप्रियता मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में कभी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा अपने गुरुओं, अपने श्रोताओं और अपने साथ काम करने वाले संगीतकारों का सम्मान करते थे। शायद यही वजह थी कि संगीत जगत के हर कलाकार उनके बारे में उनसे सम्मान से बातें करता। दोस्तों, आज की सुबह हमने उनके जीवन की अनगिनत रंगों की याद बातें की, कैसे गुजरात का एक साधारण सा लड़का दुनिया भर में गज़लों की पहचान बन गया, कैसे उनकी आवाज़ ने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई और क्यों आज भी उनकी गज़लें लोग जब सुनते हैं तो शांति सी महसूस करते हैं। उनकी गज़लें सुनना, उनके साथ शामें बिताना यादगार हो जाता था। आइए बारिशों के इस मौसम में उनकी एक और गज़ल सुनें।

जी हाँ, आज कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। जो महफिल सजी थी वो सजी थी गायक गज़ल कलाकार पंकज उदास की, और महफिल अपने अंतिम दौर में आ पहुंची है। जी हाँ, 11:47 हो चुके हैं। 80 का दशक था पंकज उदास के लिए सुनहरे दौर की शुरुआत लेकर आया। दोस्तों, संगीत कंपनियां अब यह समझ चुकी थी कि गज़लों को पसंद करने वाले श्रोताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी दौरान उन्होंने कई एल्बम रिलीज़ हुए उनके, जिसमें आहट, नशा, मुकर्रर, महफिल और रुवाई जैसे नाम बेहद लोकप्रिय हुए। इन एल्बमों ने गज़ल को ड्राइंग रूम से लेकर कार, बस, ट्रेनों, कॉलेज हॉस्टलों तक पहुंचा दिया। उस समय कैसेट प्लेयर हर घर का हिस्सा बन चुके थे और पंकज उदास की आवाज़ उन कैसेटों की सबसे पसंदीदा आवाज़ों में शामिल हो चुकी थी। दोस्तों, दिलचस्प बात ये थी कि उनके लाइव कार्यक्रमों में सिर्फ बुज़ुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी बड़ी संख्या में पहुंचते थे। यह अपने आप में एक उपलब्धि थी। गज़ल को अक्सर गंभीर और सीमित श्रोताओं की पसंद माना जाता है, लेकिन पंकज उदास थे जिन्होंने इस धारणा को बदल दिया।

दोस्तों साल 2006 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ पंकज उदास के लिए नहीं बल्कि पूरी गजल परंपरा के लिए गर्व का क्षण था। उन्होंने इस सम्मान को हमेशा अपने श्रोताओं और गुरुओं को समर्पित किया। यह उनके विनम्र स्वभाव का परिचय है। उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। उनके कार्यक्रमों की खास बात थी कि वे श्रोताओं से बहुत आत्मीयता से जुड़ते। किसी गज़ल के पहले वे उसके बारे में दो चार बातें ज़रूर करते, कभी शायर का जिक्र, कभी उस गज़ल के पीछे की भावना। इससे श्रोता सिर्फ गाना नहीं सुनते थे बल्कि उसे महसूस करते थे। उनके इसी अंदाज के कारण उनके कार्यक्रम यादगार बन गए। पंकज उदास का संगीत सीमाओं से परे था। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों में उनके चाहने वालों की बड़ी संख्या थी। भाषा अलग हो सकती थी लेकिन उनकी आवाज़ में जो कशिश थी, एहसास था, वो लोगों के दिल तक पहुंच जाता। संगीत की यही तो बड़ी ताकत है कि उसे किसी अनुवाद की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों उनके बारे में एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि वे रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत धैर्य रखते थे। अगर उन्हें लगता कि कोई शब्द या सुर वैसा नहीं आया जैसा वे चाहते हैं तो बिना झिझक दोबारा रिकॉर्ड करते। उनके लिए गुणवत्ता हमेशा गति से अधिक महत्वपूर्ण थी। शायद यही वजह थी कि उनके गीत और गज़लें आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं। वर्ष 2024 में जब पंकज उदास के निधन का समाचार आया तो सिर्फ संगीत जगत ही नहीं बल्कि लाखों श्रोता भावुक हो गए। ऐसा लगा जैसे भारतीय संगीत ने अपनी सबसे नरम आत्मीय आवाज़ों में से एक को खो दिया है। देश विदेश से कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सच ही तो है, कलाकार कभी पूरी तरह विदा नहीं होते। जब तक उनकी रचनाएं लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं, वे भी जीवित रहते हैं। पंकज उदास की आवाज़ आज भी रेडियो पर सुनाई देती है, संगीत ऐप्स पर सुनी जाती है। नई पीढ़ी भी उन्हें उतना ही सम्मान से सुनती है जितना कि पुराने लोग। आज अगर कोई गज़ल युवा सुनने की शुरुआत करता है तो अक्सर उनकी पहली पसंद पंकज उदास, जगजीत सिंह या गुलाम अली जैसे कलाकार ही होते हैं। इसका कारण सिर्फ उनकी लोकप्रियता नहीं, उनकी सादगी, उनकी सच्चाई थी। उन्होंने संगीत को कभी फैशन नहीं बनाया बल्कि भावनात्मक बनाए रखा। उनकी यादों, मोहब्बतों, इंतज़ारों, उम्मीदों, रिश्तों के साथ दोस्तों फ़िलहाल आपकी दोस्त सविता अब आपसे इजाज़त लेगी क्योंकि वक्त अब हमसे कह रहा है कि अब हम इजाज़त लें। मुलाकात होगी आपके साथ 11 तारीख को एक बार फिर। तब तक के लिए अब दीजिए मुझे इजाज़त आपकी दोस्त सविता को 100.1 पर FM गोल्ड यानी खरा सोना पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद और मैं थी सविता। चलते चलते आपके लिए पंकज दास की आवाज़ में अंतिम गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया।

0: ने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: लगातार हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट नियंत्रण विधेयक 2026 भी पेश करेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी सदन में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग खुली पहुंच के लिए नियम और शर्तें, द्वितीय संशोधन विनियमन 2026 और दिल्ली शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का आदेश 2026 की प्रतियां पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के

0: सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। झारखंड में नौकरियों के भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में जारी प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमरीका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जाओखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। गृहमंत्री अमित शाह ने सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बाला प्रीतम के नाम से विख्यात श्री हरकृष्ण साहिब ने ज्ञान करुणा और सेवा भाव के माध्यम से समाज को सद्भाव का मार्ग दिखाया। श्री शाह ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Rajya Sabha and the Lok Sabha were adjourned till 12 noon following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the upper house met at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan said the 9th of August marks the 84th anniversary of the Quit India movement, which was launched under the visionary leadership of Mahatma Gandhi. Paying homage to the martyrs of the country's freedom struggle, Mr. Radhakrishnan recalled their unparalleled courage, sacrifice and unwavering commitment to the nation's independence.
2: The 9th of August 2026 marks the 84th anniversary of the historic Quit India movement, one of the defining milestones in our nation's freedom struggle. Launched under the leadership of our great Mahatma Gandhiji on the 9th of August 1942, the movement gave decisive impetus to India's relentless quest for independence. Let us pay our respectable homage to all those who participated in the Quit India movement and made immense sacrifice for the freedom of our motherland.
1: After that, the ministers laid papers on the table of the House, the reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Defence, Ministry of Home Affairs, Commerce and Health and Family Welfare were tabled in the House. Later, Mr. Radhakrishnan took up 0 hour amid opposition uproar. Some of the members raised issues of urgent importance. However, due to continued sloganeering, the chairman adjourned the House till 12 noon. In the Lok Sabha, Speaker Om Birla also paid tributes to the

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: in the penultimate round, finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. In badminton, Indian shuttlers Rakshita Ramraj and Ashmita Chaliha have stormed into the women's singles semi-finals of the Korea Masters in Assam today. Rakshita defeated compatriot Tanvi Sharma in the quarterfinals. She will now face fellow Indian Ashmita Chaliha in the semi-finals. Ashmita advanced to the semi-finals after stunning top seed Hina Akechi of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes several parts of northern India. In chess, Grandmaster Pragyananda wins Maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: और उसके बाद उन्हें बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025

0: उसके संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: में कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई। रही है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने आवास पर मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया, NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल हुए। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लचीली, इनोवेटिव और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी को पार कर स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा कि काकरौवा गांव के छात्र स्कूल पहुंचने के लिए बांध के खंभों पर चलकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आयोग ने माना कि छात्रों के लिए स्कूल पहुंचने के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया और शिवसेना के सांसद भी शामिल हैं। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नव निर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लचीली, इनोवेटिव और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी को पार कर स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने माना कि छात्रों के लिए स्कूल पहुंचने के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था न होना उनके गरिमापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की है। हमारी संवाददाता ने बताया कि कल नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में ये समीक्षा की गई।
2: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल दो दिन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाएंगे। दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम में सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक जाएंगे। दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगे। उत्तर

क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश की संभावना है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण हो। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुकूल, नवीन और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने भेजी गई द्वेषपूर्ण फाइलों के माध्यम से पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की कार्यप्रणाली वाली घटनाएं सामने आई हैं। केरलम के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिले दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट पर थे, अब उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहीं शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में आज मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंक गिरकर 24,571 पर बंद हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर R. प्रज्ञानंदन ने अमेरिका में आयोजित

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: पांच बजकर 16 मिनट और 32 सेकंड 100.1 FM गोल्ड खरा सोना के सभी श्रोताओं का, सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक चाय एंड क्लासिक्स में। मैं रहूंगी आपके साथ 6:30 तक। 6 बजे हम लेंगे एक न्यूज ब्रेक और फिर 6:20 पर मैं एक बार फिर से लौटूंगी लेकर चाय एंड क्लासिक्स ओनली ऑन 100.1 FM गोल्ड। और अब चलिए रुख करते हैं FM गोल्ड परियोजना प्रस्तुति की ओर।

0: আমার যে ছোট ভাই আছে না, খুবই দুষ্টুমি করে। কলেজে পড়ার সময় মার্কশিট ফটোশপ করে বাবাকে দেখাতো। কাল আমি দেখি ইলেকট্রিক বিল জিরো, ভেবেছি ঠিক ফটোশপ করেছে, না হলে জিরো বিল কি করে সম্ভব? প্রশ্ন করতেই বলল,
1: দাদা সবই ওপরওয়ালার দয়া, সোলার প্যানেল আছে না?
0: আমি বললাম, ও এটা ঠিক কাজ। পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা, যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in।
2: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
3: और आज की परियोजना प्रस्तुति में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। श्रोताओं, जल ही जीवन है, इसका अर्थ सिर्फ हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं है। इस उक्ति का व्यापक अर्थ है सृष्टि की समग्र जीवन के लिए जल के महत्व को इंगित करना। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसका सीधा संबंध किसान की फसल, उसकी मेहनत और खेत तक पहुंचने वाले पानी से है। जी हाँ, आज का विषय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका नारा है हर खेत को पानी। भारत में खेती आज भी काफी हद तक बारिश पर निर्भर है, कभी ज्यादा बारिश तो कभी सूखा। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना, पानी की बर्बादी रोकना, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बहुमंत्रालय योजना है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तीनों मंत्रालय मिलकर इस योजना को जमीन पर लागू कर रहे हैं। 1 जुलाई 2015 को की गई ये योजना, तब से लेकर आज तक देश के लाखों गांवों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चार प्रमुख घटकों

0: पर आधारित है। हर खेत को पानी, इसके अंतर्गत नहरों का विस्तार, पुरानी नहरों की मरम्मत, जलाशयों का निर्माण, भूजल स्रोतों का विकास ताकि खेतों तक पानी आसानी से पहुंच सके। जल संरक्षण और जल प्रबंधन, इस घटक के तहत तालाबों का निर्माण, चेक डैम, खेत तालाब, वर्षा जल संचयन यानी बारिश के पानी को संभाल कर रखा जाता है। सूक्ष्म सिंचाई की यदि बात करें तो वो है पर ड्रॉप मोर ड्रॉप क्रॉप। इस घटक के तहत ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है। इससे कम पानी में अधिक फसल संभव होती है। और चौथा है वाटरशेड विकास। सूखे और पहाड़ी इलाकों में मिट्टी संरक्षण, जल बहाव रोकना, नमी बनाए रखना, इन कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, पानी की बचत होती है, फसल उत्पादन बढ़ता है, खेती की लागत घटती है, सूखे का असर कम होता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। पूरा भारत इस योजना के दायरे में है। आज इस योजना के कारण सूखे क्षेत्रों में खेती संभव हो रही है, पानी की समझदारी से उपयोग हो रहा है, पानी को समझदारी से उपयोग किया जा रहा है, किसान आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं और फसल चक्र में सुधार हो रहा है। साथियों, पानी सीमित है लेकिन खेती अनमोल है। अगर पानी बचेगा तो खेती बचेगी और किसान बचेगा, हम बचेंगे। याद रखिए, हर खेती को, हर खेत को पानी, हर किसान को सम्मान। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत अभी आपने सुना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में।
1: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को, दो रास्ते फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि जब आप चाय एंड क्लासिक सुन रहे होते हैं तो यदि आपने फीकी चाय भी अपने साथ आप पी रहे हो और उसके साथ यदि आप इन गानों को सुन रहे हैं, इन क्लासिक्स को सुन रहे हैं, तो इन क्लासिक्स की चाशनी से आपकी चाय बिल्कुल फीकी नहीं लगेगी, आपको आजमा कर देख लीजिए। और चलिए आगे रुख करते हैं अगले गीत की ओर। आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज़ में वक्त फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत से सजाया है रवि ने।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार ने गाया, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया। 5:40 और आप सुन रहे हैं चाय एंड क्लासिक्स अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 100.1 FM गोल्ड खरा सोना। श्रोताओं बता दूं कि आज 7 अगस्त है, आपको पता है, और आज जो स्तनपान सप्ताह है उसका शेष दिन है। इस सप्ताह का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ, अनेक देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों और नागरिक संगठन एक साथ मिलकर आयोजित करते हैं। और बता दूं कि हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस सप्ताह स्वास्थ्य विकास और समानता की नींव के रूप में स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है और जिसमें स्तनपान को समाज के बेहतर भविष्य में एक निवेश बताया गया है। इस साल ये सप्ताह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य अभियान के तहत आयोजित किया गया। इसके दौरान माताओं और शिशुओं को स्तनपान के पूरे सफर में समुचित स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता देने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य हर माँ को उचित जानकारी, प्रशिक्षित सलाहकारों में से मदद और ऐसा पारिवारिक, चिकित्सीय और कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करना है जो स्तनपान को प्रोत्साहित करे, एनकरेज करे और माँ को सशक्त बनाए। स्तनपान जो है, श्रोताओं, हम सोचते हैं कि केवल शिशु का पोषण है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक समाज का दीर्घकालिक स्वास्थ्य निवेश है। इसे स्वास्थ्य सेवाओं पर धन खर्च कम होता है, बच्चों को बौद्धिक क्षमता में सुधार उनके आता है, आर्थिक उत्पादन उनका बढ़ता है और संपूर्ण पीढ़ियों को बेहतर शुरुआत मिलती है। 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुरू हुआ स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य अभियान में साल भर तक मातृ और नवजात मृत्यु दर को समाप्त करने और महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। और चलिए अब इस जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं चाय एंड क्लासिक्स कार्यक्रम में। मन्ना दे की आवाज में सुनेंगे आप इस अगले गीत को।

0: कभी तो हंसाए।
1: आनंद फिल्म के इस गीत को सलील चौधरी ने संगीत से सजाया और योगेश ने इसके अल्फाज लिखे। 5:47 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स ओनली ऑन 100.1 एफएम गोल्ड और मैं हूं आपकी आरजे पलक और रहूंगी आपके साथ 6:30 तक। पर 6 बजे हम लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक और 20 मिनट के इस न्यूज़ ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी 6:20 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक प्यारा सा गीत हो जाए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म शोर से।

संतोष आनंद के गहरे अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। 5:54 आप सुन रहे हैं चाय एंड क्लासिक्स अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 100.1 FM गोल्ड। और अब चलिए एक आखिरी गीत न्यूज ब्रेक के पहले, और ये आखिरी गीत है मुकेश की आवाज में फिल्म संगम से, हसरत जयपुरी के अल्फाज और शंकर जयकिशन का संगीत। बेहतरीन गीत, इसे एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ हम लेंगे 20 मिनट का एक न्यूज़ ब्रेक।

0: और अब न्यूज ब्रेक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान

0: विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India has rejected the objections

कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए आज देश 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2025 के 3 संत

0: गुप्ता उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का महत्व क्या है, इस वर्ष दिए गए पुरस्कार क्यों विशेष हैं, सरकार हथकरघा क्षेत्र को किस प्रकार सशक्त बना रही है और ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा ग्रामीण आजीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय बुनकरों ने अपनी कला, कौशल और रचनात्मकता से दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने भारतीय उत्पादों और विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा दी थी। वर्ष 2015 से इस दिवस को राष्ट्र स्तर पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।
1: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर, आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: आज भारत का हथकरघा क्षेत्र केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी है। देश में 35 लाख से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं हैं। ये क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका का आधार होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। हथकरघा क्षेत्र के विकास, सरकार के विभिन्न पहलों और भविष्य की संभावनाओं पर विकास आयुक्त हथकरघा डॉक्टर एम बीना ने आकाशवाणी संवाददाता उत्पल कुमार से विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं।
2: डॉक्टर बीना, सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं और अब तक इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही है?
3: भारत के हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके तहत हमारा अप्रोच है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वीवर्स जो हैं ज्यादातर एक ही इलाके में रहते हैं, तो उस पूरे इलाके को एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके वहां पर विकासशील कार्यक्रम और योजनाएं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें दो तरह की योजनाएं हैं, एक तो है स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां 500 लगभग वीवर्स जहां रहते हैं तो वहां पे हम ये योजना चलाते हैं, 2 करोड़ तक उसका हम सहायता देते हैं। इसमें हम लूम्स, सोलर लाइटिंग, वर्कशेड वगैरह का हम सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्लस्टर में जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा जब तक ये क्लस्टर कार्यक्रम चलाया जाएगा, और एक क्लस्टर डिजाइनर भी रहेगा ताकि वीवर्स को नए डिजाइन से भी वो उनको अवगत किया जाएगा। दूसरा हमारे मेगा क्लस्टर्स, माने जो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां 10,000 से ऊपर वीवर्स है, तो वहां पे मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो 30 करोड़ तक उसका हम असिस्टेंस देते हैं, वो राज्यों के साझेदारी से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट हैं, जैसे कि स्किलिंग सपोर्ट, देखो वीवर को नए वीविंग टेक्निक्स के बारे में, नए डिजाइन्स के बारे में वगैरह के लिए हम समर स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको डिजाइन सपोर्ट, प्रोडक्ट नया करने के लिए भी उनको सपोर्ट देने के लिए डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स भी बनाया गया है।
2: हथकरघा बुनकरों की आजीविका में सुधार लाने में सरकार की कौन सी योजनाएं सबसे अधिक प्रभावी रही है?
3: बुनकर की आय को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो रॉ मटेरियल है, सूता जो है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। तो अगर आप नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, या फिर सिल्क हो गया, या वूल हो गया, तो उसमें हम 15% हम प्राइस सब्सिडी देते हैं, और जो भी अगर इसके अलावा जो नॉट नेचुरल फाइबर्स है उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट में हम कमी लेके आते हैं। दूसरा, वीवर को मुद्रा लोन का भी फैसिलिटी है, और जब प्रोडक्ट बन जाए तब उनको वीवर को चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट, तो उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर बुनकर मेले लगाए जाते हैं।
2: डॉक्टर बीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार केवल उत्कृष्ट बुनाई के लिए नहीं, बल्कि नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप, उत्पादक कंपनियों और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिए जाते हैं। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो जीवन भर के

0: उत्कृष्ट योगदान और पारंपरिक बुनाई को संरक्षित रखने वाले बुनकरों को दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने परंपरा और आधुनिक तकनीक के संतुलित प्रयोग से गुणवत्ता और रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद हाजाम और फैयाज अहमद वानी भी शामिल हैं, जिन्हें चंदर कानी शॉल की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा।
1: मैं फयाज अहमद वानी और मेरे साथ है मंजूर अहमद हजाम। हम कानी हमा बड़गाम के रहने वाले हैं। हम बहुत ही खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और ये लम्हा हमारे लिए इज्जत और फख्र का दिन है और हम ये अवार्ड उन कानी हमा के बुजुर्गों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने इस फन को नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचाया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्र गुजार है कि उन्होंने हमारे गाँव टूरिज्म विलेज और हैंडलूम विलेज करार देकर करोड़ों रुपयों की मावनत की। हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने हमें इस एजाज से नवाजा है।
0: इसी तरह ओडिशा के प्रफुल्ल कुमार साहू को पारंपरिक जगतपुर साड़ी की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने भी आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए।
2: मैं प्रफुल्ल कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा जगत सिंहपुर। आज मेरे लिए बहुत गर्व और भावुकता का क्षण है। मुझे 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्राप्त करने के सौभाग्य मिला है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ओडिशा के जगत सिंहपुर जिलों के सभी बुनाकर और हमारी समृद्ध हथकरघा परम्परा का सम्मान है। मैं भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम ओडिशा सरकार वीवर सर्विस सेंटर नेताजी तंतुबाई सहयोग समिति के सदस्य बैनिकाओ और सभ्य संस्थाओं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हम जैसे बुनकर को प्रोत्साहन दिया। मैं इस सम्मान को अपने परिवार अपने गुरुजन और सभी साथी बुनकर को समर्पित करता हूँ।
0: श्रोताओं इन पुरस्कार विजेताओं की बातें ये बताती हैं कि भारतीय हथकरघा केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है जिसे आज भी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथकरघा क्षेत्र ने तेजी से नए आयाम हासिल किए हैं। वर्ष 2025-26 में भारत का हथकरघा निर्यात लगभग 1331 करोड़ रुपए रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश इसके प्रमुख बाजार हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 36 हस्तशिल्प वस्तुओं पर GST घटाकर 5% किया गया, हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय फाइबर योजना तथा राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसी नई पहलें शुरू की गयी। डिजाइन, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम हैकाथॉन 2026 जैसी पहलें भी की जा रही हैं। भारत की हथकरघा परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ी हुई है। आज भारतीय हथकरघा फैशन, डिजाइन, निर्यात, डिजिटल विपणन और सतत विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें उन लाखों बुनकरों के श्रम, समर्पण और सृजनशीलता का सम्मान करने का अवसर देता है जिनके हाथों से भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया तक पहुँचती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप का था। नमस्कार।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

न्यूज ब्रेक के इस पार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ चाय एंड क्लासिक्स में। मैं आपकी आरजे पलक और आप सुन रहे हैं 100.1 एफएम गोल्ड। 6:21 और बस कुछ ही देर में वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त हो चलेगा। फिलहाल 6:30 तक मैं हूँ आपके साथ और बता दूँ कि आज हैंडलूम डे है। हथकरघा उद्योग की समृद्ध विरासत और बुनकरों के योगदान का सम्मान करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष हर साल 7 अगस्त यानी आज के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। ये दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना था। ये उत्सव पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने और हथकरघा क्षेत्र में शामिल कारीगरों के सामाजिक आर्थिक विकास के महत्व पर जोर देता है। और अब चलिए एक बेहतरीन गीत मुकेश की आवाज़ में फिल्म हिमालय की गोद में से सुनते हैं। और इस गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा और कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया।

6:26 और अब 6:27 हो चुका है वक्त समय, और अब वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त हो चला है। आपकी आरजे पलक के पलक झपकाने का समय हो गया। मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड के। छोड़े जा रही हूँ आपको मोहम्मद रफी उस्मान कल्याणपुर की आवाज के साथ, फिल्म शगुन के इस गीत के साथ जिसे साहिर ने लिखा, खय्यम ने संगीतबद्ध किया। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और रहिए व्यस्त, और सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Siddharth Singh.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले

0: मुख्य आर्थिक समाचारों पर। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 450 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,600 अंक से नीचे आया। संसद ने भुगतान में देरी तथा विवादों को सुगमता से हल करने के उद्देश्य से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और भारत ने आईपीओ की संख्या के मामले में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। जुटाई गई धनराशि के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी 15 साल के निचले स्तर पर, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की इक्विटी भागीदारी रिकॉर्ड 70% तक पहुंच गई।
1: A quick look at the headlines in English. Benchmark domestic indices fall. Sensex drops over 450 points. Nifty settles below 24,600. Parliament passes MSME Development Amendment Bill 2026 to address payment delays and simplify dispute resolution. And India retains top position in IPO count, ranks third in fundraising in last fiscal year, highlights SEBI annual report. Adds FPI's ownership falls to a 15-year low, while domestic institutional investors' equity holding reaches a record 17%.

0: So listeners, before we move further into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब नजर डालते हैं प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 456 अंक यानी 0.6% गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 65 अंक यानी 0.3% की गिरावट के साथ 24,571 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स 0.2% चढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे पहले कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर बढ़ी चिंताओं के बीच बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। पूरे कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी नुकसान में कारोबार करते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 456 points or 0.6% to close at 78,499. The Nifty dropped 65 points or 0.3% to settle at 24,571. In the broader market and the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.2%, while the small-cap 100 index ended marginally down. Earlier, the markets opened with a gap down as crude oil prices rose amid renewed concerns over the Strait of Hormuz. The Sensex and the Nifty traded with losses throughout the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस 6%, बजाज फिनसर्व 4.2% और आईसीआईसीआई बैंक 3.7% गिरा। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर में 3.5% की तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% चढ़ा, जबकि भारतीय स्टेट बैंक में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: In sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, focused IT advanced over 1.4%, auto rose 1.3%, and hospitals gained over 1.2%. In contrast, financial services dipped over 1.3%, private banks as well as top 10 banks shed nearly 1%, and consumer durables lost 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,209 companies declined, 2,044 advanced, and 207 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया मामूली मजबूत होकर 95.21 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। और उद्यम चर्चा की शुरुआत करते हैं आज जो बाजार का रुख रहा, जो प्रमुख घरेलू शेयर बाजार जो है आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 456 अंक

0: जो है सेंसेक्स से वो गिरा हुआ है, तो क्या कहेंगे बाजार को किस तरीके से वो दिन आप देखते हैं?
1: देखिए, अगर आप पीछे बाजार का मूवमेंट जिस तरीके से रहा है, अभी भी जो गेन हुआ था, अगर आप निफ्टी देखें, क्योंकि सेंसेक्स में ऐसा लगता है पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब गिरता है 300-400 बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर उसको हटा के अगर निफ्टी देखें जहाँ पे विड्थ भी ज़्यादा है उसकी, निफ्टी 50, तो आप पाएंगे कि अभी भी ये 24,500 के आसपास है। और बीच में ऐसा एक वक्त आया था जब 24,000 उससे भी नीचे जा रहा था, तो जो रिबाउंड हुआ था, अगर रिबाउंड शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस वो अभी बरकरार है। रिबाउंड का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, 100-150 निफ्टी में गया है, तो वो होल्ड ऑन कर रहे हैं
0: जी।
1: और उसमें जो इरोजन हुआ है, जो उसमें जो डेंट लगा है, वो तेल के दाम के ऊपर है। उम्मीद की जा रही थी, अब ये ग्लोबली है कि उम्मीद की जा रही थी कि हॉर्मोज स्ट्रेट्स के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ताकि वो स्टार्टिंग कंडीशन है, ताकि बाकी वहाँ पे जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं, जिससे एक स्थाई कुछ अरेंजमेंट होगा मध्य पूर्व में, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट वो शायद आया नहीं, और उसके वजह से कुछ चिंताएं हैं, सोच है। उस हिसाब से आप देखेंगे कि कच्चे तेल के मार्केट में भी असर पड़ा है। दूसरा है कि अमेरिका में कुछ आंकड़े निकल रहे हैं रोजगार या बेरोजगारी से जुड़े हुए, तो वो आंकड़े इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं, क्योंकि क्या फेडरल रिजर्व जो है, जो उनके केंद्रीय बैंक है, क्या वो ब्याज दरों को साल के अंत में बढ़ाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, और मार्केट उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेगी। ये बताता चलूँ कि अभी जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, वो पीछे जैसे जो चेयरमैन थे, हेड्स थे, उनसे थोड़ा सा अलग चल रहा है उनका। वो उन्होंने कहा कि हम गाइडेंस नहीं देंगे, हम नहीं बताएंगे। पहले सारे जो चेयरमैन थे वो बता रहे थे कि हमें लगता है ऐसा होगा, तो मार्केट को गाइडेंस दे रहे थे, हैंड होल्ड कर रहे थे
0: जी।
1: तो इनका ये जो हैं वॉश, केविन वॉश, उनका मानना है कि ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है गाइडेंस देना
0: जी।
1: तो फिर तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सोच के बारे में
0: सारी अनिश्चितता,
1: हाँ, तो फिर आपकी जो मीटिंग होती है उसके मिनट से आप निकालेंगे, तो आपको जो एक एडिशनल थॉट प्रोसेस है जो आपको क्योंकि देखिए जब अनिश्चितताएं होती हैं, तो आप चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन, जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन, उसको लेके आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा की ज़रूरत है। जहाँ पे आपकी कमी होगी, तब जित थोड़ा सा भी डेटा आएगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आएगा, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाती हैं, ऊपर नीचे साइडवेज मूवमेंट रोटेट करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो ये जब तक वहाँ पे, क्योंकि तेल तकरीबन हर आर्थिक एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, तो जब तक वो एसेंशियल, इट्स लाइक ब्लड
0: जी,
1: खून की तरह शरीर में, तो वो जब तक हमें उसके ऊपर एक अंदाजा नहीं हो जाता, रक्तचाप, खून में और क्या क्या है, ब्लड काउंट, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, ये अगर आप हमें अंदाजा नहीं होता है
0: जी,
1: तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। और ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड की तरह नहीं है। तो जब आप हाई रिस्क लेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए होगा और कन्विक्शन होगा।
0: बिल्कुल, तो मार्केट की जो पल्स है वो ये डिसाइड करेगा
1: जी। बिल्कुल, ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा, फिर वो हजम करेंगे, खाने की तरह हजम करेंगे, फिर वो एक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट माइल्स इन्फॉर्मेशन। तो जो इस जो श्रोता है, ये उनको मेरा ये कहना है कि ये भी देखने का एक तरीका, कई और जो लोग इस प्रोग्राम में आते हैं वो अलग तरीके से देखते होंगे, और वो भी सही है। तो देखने का एक तरीका नहीं होता, कई तरीके से देखा जा सकता है। पर जो अभी जो मार्केट में जो मूवमेंट्स हैं, जो डायरेक्शन है, और जो आपका रिस्पॉन्स होगा, वो अनफॉर्चुनेटली अफॉर्चुनेटली ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, मैक्रो डेवलपमेंट्स हैं, बड़े बिग पिक्चर में वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम क्या ही कर सकते हैं? नॉर्मली क्या होता है, आप कंपनी को देखते हैं, सेक्टर को देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, चार्ट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर तेल का दाम एकदम से बढ़ने वाला होगा, तो उसका आप क्या करेंगे?

0: सार्वजनिक ऋण प्रतिभूतियों के इश्यूज में लगभग 39% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 14 इश्यूज के जरिए कुल 1,756 करोड़ रुपए जुटाए गए। सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएस की नई व्यवस्था भी शुरू की है। इसका उद्देश्य कीमतों की बेहतर खोज सुनिश्चित करना और भारतीय बाजारों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। सेबी ने भारत के मार्केट को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए एक नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस भी शुरू किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई की हिस्सेदारी 15 साल के निचले स्तर पर आ गई, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईए की इक्विटी हिस्सेदारी मार्च 2026 तक रिकॉर्ड 70% तक पहुंच गई। तो उद्यन, यहां पर अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को देखें तो दो अच्छी बातें, आईपीओ की संख्या के मामले में टॉप पर हैं और दूसरा जो फंड रेज्ड हैं इसमें भी हम तीसरी पोजीशन पर हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, ये जब पीछे मार्केट्स के बारे में विश्लेषण हो रहा था तो एक कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि देखिए ये काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो जो आईपीओ रेज कर रहे हैं वो बेसिकली फॉरेन, उनमें से काफ़ी कंपनीज ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंपनीज हैं, वो आईपीओ रेज करके पैसे भारत से बाहर लेके जा रही हैं
0: जी।
1: तो उसको लेके बहुत हाई तौबा चली कई महीने और कई लेख लिखे गए, कई बोल बोले गए। बट इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ पे आईपीओ में इंटरेस्ट बरकरार है वहाँ पे और स्टोरीज भी हैं
0: जी।
1: तो कई बार क्या होता है जब बारिश हो रही होती है तो फिर मूड थोड़ा सा डाउन होता है तो फिर कुछ बातें भी वैसी मध्यम मध्यम सी होने लगती है। पर अब हमें ये याद रखना है कि हमारे यहाँ पे और स्टोरीज भी हैं। एक डिफेंस का सेक्टर है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर आपके स्पेस से जुड़े जो स्टार्टअप्स थे 10 साल पहले वो अब बड़े होते चले जा रहे हैं और इवेंचुअली वो आके मार्केट्स को टैप करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक पाइपलाइन बनती चली गई है और ये आप जब बनाते हैं तो आईपीओ में फंड रेज आपका बढ़ता चला जाएगा, नंबर वन। नंबर टू जो है वर्थ पॉइंटिंग आउट कि डीआईआईज का शेयर 17% है। इसका मतलब भारत के जो इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी सबसे पहली बार उसका वर्चस्व ज्यादा हुआ है विदेशियों से
2: जी। राइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय NBFCs, non-banking financial companies, grew by 14.4% year-on-year in June 26 compared to 11.1% a year earlier. According to the RBI, credit to agriculture and allied activities rose 17.9%, up from 5.1% a year ago. Retail loan growth accelerated to 20.3% from 14.3%, driven by strong growth in housing, vehicle loans and loans against gold jewellery. However, credit growth to the services sector moderated to 17.6%, from 22.4%, while lending to industry slowed to 6.7% from 10.3%.
0: अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में $10.5 अरब बढ़कर $692.8 अरब हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं जो इस दौरान $8.7 अरब बढ़कर $564.6 अरब हो गई। देश के स्वर्ण भंडार में $1.6 अरब की वृद्धि हुई है और ये $104.7 अरब पर पहुंच गया है। विशेष आहरण अधिकार यानी SDR $4.80 करोड़ बढ़कर $18.66 अरब हो गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित स्थिति भी $2.80 करोड़ बढ़कर करीब $4.8 अरब हो गई है।
2: So all this, Udyan, just a brief comment. Good news, progressive news.
1: We are holding on. Let's not forget that RBI had to intervene in the forex market, but still our forex reserves are holding on.
2: Right.
0: और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में सम्मिलित दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% गिरा, जबकि जापान का निकेई 225 0.1% घाटे के साथ बंद हुआ। वहीं प्रमुख यूरोपीय बाजारों में आज तेजी का रुख रहा। ताजा खबर मिलने तक जर्मनी का टैक्स 0.8% से अधिक चढ़ा, जबकि लंदन के फुटसी 100 में 0.7% से अधिक की बढ़त बनी हुई थी।
2: US market

0: It's Wall Street ended in negative territory yesterday, weighed down by rising crude oil prices and a slew of corporate earnings releases. The Dow Jones Industrial Average dropped 0.9%, the S&P 500 fell 0.2%, and the Nasdaq Composite Index ended nearly flat. On the economic front, the unemployment insurance weekly claims increased by 1,000 to 1,99,000 in the previous week, according to data released by the U.S. Department of Labor. Global crude oil prices dropped today as investors weighed signals that Gulf states and Iran were closing in on a deal to reopen the Strait of Hormuz under a temporary arrangement. Brent crude was trading 0.8% down at $81.86 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading 0.3% lower at $77.08 per barrel when reports last came in. Crude oil prices, you'd earlier said we're looking at again range bound here, Udayan?
1: Yeah, I would say so, unless there is the whole situation flares up again. We in the short term, we are looking pretty much at that.
0: Right, okay. And as long as it is in this range, good news for India?
1: No, not really. We would like it lower.
0: Okay.
1: But we really don't have so much of a choice. But as long as we can manage and we can meanwhile build reserves and stuff like that, the strategic reserves, get on to things like PNG, manage our stuff well, I think we should be okay.
0: Right, right.
2: और अब नजर डालते हैं सोने और चांदी के बाजार पर। सोना 0.8% की तेजी के साथ 149,621 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी 2.5% से अधिक के उछाल के साथ 231,381 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। तो उदयन, इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं सोने और चांदी के मार्केट को?
1: देखिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को उनकी इंटरेस्ट बनी रहेगी, प्राइसेस आपको मॉडरेट लेवल पे बढ़ती तो रहेंगी जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने रहेंगे, तो गोल्ड में इंटरेस्ट बना रहेगा और 10% ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो थंब रूल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करने का है। और उस ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करता है, आपका अगर रिटर्न्स में अप डाउन हो रहा है
2: जी,
1: तो गोल्ड एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह आपके पूरे ओवरऑल रिटर्न को एक स्टेबिलिटी देता है, एक स्थिरता देती है।
2: जी बिल्कुल, तो सबकी नज़रें गोल्ड पर रहती हैं और आपने जो बताया, और इसी के साथ समय कम है उदयन जी, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और
0: एब्सोल्युटली उदयन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम। And a look at the headlines before we close. Benchmark domestic indices fall. Sensex drops over 450 points. Nifty settles below 24,600. Parliament passes MSME Development Amendment Bill 2026 to address payment delays and simplify dispute resolution. And India retains top position in IPO count. Ranks third in fundraising in last fiscal year, highlights SEBI annual report. Adds, FPI's ownership falls to a 15-year low while domestic institutional investors' equity holding reaches record 17%. That's all for today. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता

0: देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खाते को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर और रियासी जिलों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में अमृत के दूसरे चरण के तहत उधमपुर शहर के लिए 124 करोड़ से अधिक की जल आपूर्ति संवर्धन योजना सहित 16 करोड़ से अधिक की जल प्रबंधन परियोजना शामिल है। केरलम के चार जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चार अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिया ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anucha Kumar. India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi while replying to a question in this regard.
3: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs, on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations including the

0: लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहाँ चर्चा होगी गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहाँ निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक है, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से
1: 24/7 helplines are being run so that any person who needs support can also approach them. Replying to a question in the press conference of former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, Mr. Jaiswal reiterated that India had no role to play in the event which was organized by a private media entity. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए।

0: इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। दो दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
6: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
7: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
8: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानू के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद,

0: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আমরা শুধু মানুষকে দেখি না, আমরা দেখি সেই মানুষকে ঘিরে থাকা সম্পূর্ণ পরিবেশকে। তাঁর সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে। লোকগান, কবিগান, বাউল, গ্রামীণ বিশ্বাস, লোকাচার, এই সব তাঁর লেখার শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে। তাঁর কাছেও এইসব কোনো অজানা বা অদ্ভুত জগৎ ছিল না, এগুলো ছিল মানুষের জীবনের স্বাভাবিক অংশ। তাই তাঁর সাহিত্য পড়লে মনে হয় আমরা যেন কোনো দূরের গ্রামে দাঁড়িয়ে মানুষের কথা শুনছি।
1: একেবারেই তাই। আর সেখানে কেউ গান গাইছে, কেউ গল্প করছে, কেউ তর্ক করছে, কেউ বা প্রেমে পড়েছে, কেউ সংসারের চিন্তায় অস্থির, আবার কেউ পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাইছে। হ্যাঁ, পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাইছে, কিন্তু তারাশঙ্করের গ্রাম কখনো স্থির নয়। এই জায়গাটা কিন্তু ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আসলে যে গ্রাম বাংলাকে তিনি দেখেছেন সেই গ্রাম বদলাচ্ছে, পুরনো জমিদারি ব্যবস্থা ভাঙছে, নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে, শহরের প্রভাব গ্রামেও পৌঁছচ্ছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, নতুন পেশার সুযোগ তৈরি হচ্ছে, আর তাই মানুষের চিন্তাভাবনাও বদলাচ্ছে।
0: একটা পুরনো সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে একটা নতুন পৃথিবীর সংঘাত তৈরি হচ্ছে, আর এই সংঘাতই তার বহু রচনার ভেতরে গভীরভাবে কাজ করেছে। আছি আজ আমরা বইবৃত্তে মাটির কাছাকাছি এক কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা নিয়ে। যাব সংবাদ বিরতিতে, ফিরবো ঠিক রাত 11:10। সঙ্গে থাকুন 100.1 FM গোল্ড কলকাতায় কল্পলালা সুস্মিতার সঙ্গে।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মোহাম্মদ জুবের। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
4: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पे निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। छोटे व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it yesterday. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament yesterday witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. Due to continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition's uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew most favored nation status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India attaches high priority on safety and security of Indian vessels and seafarers. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during media briefing in New Delhi yesterday, adding that Indian missions all across the Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said India continues to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways.
3: About the safety and security of our vessels and our seafarers. This is a subject of high importance and we attach high priority to the issue. Our missions all across the Gulf region, they are in constant contact with the Ministry of Shipping so that as and when any support is required to be provided to our seafarers or Indian flagged ships, they can do that. In fact, they have been running 24/7 helplines so that any person who needs support.
2: Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. He will address more than 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars. Director IIT Delhi, Rangan Banerjee, said in a press conference today that the Prime Minister will present the Institute's most prestigious award, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medals to the meritorious students. Mr. Banerjee said that the Prime Minister will remotely inaugurate Parampragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at IIT Delhi's Sonipat campus. The agitation over the alleged irregularities in the JPSC, JSSC and other competitive examinations in Jharkhand continued to dominate both the assembly and the streets yesterday. On the second day of the monsoon session of the Jharkhand Assembly, the opposition raised the issue and demanded cancellation of the exams and a CBI inquiry under the supervision of the court. Parliamentary Affairs Minister said the matter had already been discussed in the Business Advisory Committee and that the government was prepared to respond to all issues raised in the House. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has launched the J&K Artificial Intelligence Centre of Excellence, AICOE, and dedicated Project Phoenix, an AI-enabled digital commerce platform at the Indian Institute of Technology, IIT Jammu. Akashvani Jammu correspondent reports that these initiatives aim to promote technology-driven governance, foster innovation and entrepreneurship, and expand economic opportunities through the adoption of emerging technologies and enhanced digital market access. And at the Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, India's Titli Maji clinched a silver in the women's 45 kg category. And that is the end of this news bulletin.